0: We'll be back right after the commercial break.
1: ख्वाबों को हकीकत में बदलिए, आपके ख्वाबों की खूबसूरती अब बेलडोना कॉस्मेटिक्स के साथ। नए साल में एक नया आगाज।
0: We'll be back right after the commercial break.
1: ख्वाबों को हकीकत में बदलिए, आपके ख्वाबों की खूबसूरती अब बेलडोना कॉस्मेटिक्स के साथ। नए साल में एक नया आगाज़।

FM 93 आवाज क्लियर देगा ना FM 94 सम आवाज रेडियो दलाय तासु सेरा क्लियर देगा ना कांगली जे सुमर अपडेट सम आवाज होरी नो वन बाय वन वन वन मैसेज बुकी मालूमात रा गिचेरा रेडियो दलाय आवाज क्लियर सुलुकना

0: बाज लोग अटकल पिच्चू कहेंगे कि वो तीन थे और चौथा उनका कुत्ता था, और बाज कहेंगे कि वो पांच थे और छठा उनका कुत्ता था, और बाज कहेंगे कि वो सात थे और आठवां उनका कुत्ता था। कह दो कि मेरा परवरदिगार ही उनके शुमार से खूब वाकिफ है, उनको जानते भी हैं तो थोड़े ही लोग जानते हैं, तो तुम उनके मामले में गुफ्तगू न करना मगर सरसरी सी गुफ्तगू, और न उनके बारे में उनमें से किसी से कुछ दरियाफ्त ही करना।
1: وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا
0: اور کسی کام کی نسبت نہ کہنا کہ میں اسے کل کر دوں گا।

उसने कहा कि भला आपने देखा कि जब हमने पत्थर के पास आराम किया था तो मैं मछली वहीं भूल गया और मुझे आपसे उसका जिक्र करना शैतान ने भुला दिया और उसने अजब तरह से दरिया में अपना रास्ता लिया।

0: फिर उन्होंने वहां एक दीवार देखी जो झुक कर गिरा चाहती थी, तो खिज्र ने उसको सीधा कर दिया। मूसा ने कहा कि अगर आप चाहते तो उनसे इसका मुआवजा लेते ताकि खाने का काम चलता।
1: قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا।
0: खिज्र ने कहा कि अब मुझ में और तुम में अलहदगी, मगर जिन बातों पर तुम सब्र न कर सके मैं उनका तुम्हें भेद बताए देता हूँ।

0: और वो जो दीवार थी सो दो यतीम लड़कों की थी जो शहर में रहते थे और उसके नीचे उनका खजाना मदफून था और उनका बाप एक नेक आदमी था, तो तुम्हारे परवरदिगार ने चाहा कि वो अपनी जवानी को पहुंच जाएं और फिर अपना खजाना निकालें। ये तुम्हारे परवरदिगार की मेहरबानी है और ये काम मैंने अपनी तरफ से नहीं किए, ये उन बातों की हकीकत है जिन पर तुम सब्र न कर सके।
1: قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا
0: اور تم سے ذوالقرنین کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ میں اس کا کسی قدر حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔

0: डेरा डेरा लगन बल्कि डेरा डेरा ज्याता मुबारक शाह तासुम पौधे प्रोग्राम की माता लाइफ काल रा मिलाव खलेशी ओ जमा सरा द लाइफ काल दलारी खबरी कवलेश
1: कतल को मल करो दबरो पगशो
0: अलग दस हो।